हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल und grüß Gott, Salzburg. मैं हूं इमरान आलम और आप लोग सुन रहे हैं पाक इंडिया एक्सप्रेस, और हमारे बैकग्राउंड में आतिफ असलम की एक कलाम चल रहा है, वही खुदा है. जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते हैं कि कुछ ही देर में रमज़ान जो है वो शुरू हुआ चाहता है, और मैं चाह रही थी कि अगर कल एक्चुअली अभी मेरा सेंडिंग सुनने के बाद आपने अगर सहरी की तैयारी शुरू करनी है, तो मैं चाहती थी कि आप कुछ अच्छा सीख कर और मैं कुछ अच्छा सुना कर आपको आप रमज़ान का स्टार्ट करें. तो अगर तो आप ये सेंडिंग सुनेंगे और उसके बाद रमज़ान स्टार्ट हो रहा हुआ और आपने सहरी की तैयारी करनी हुई, तो मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बहुत रमज़ान मुबारक. जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इबादतें करें, अपने दुआएं अल्लाह से मनवाएं, अपने गुनाह बख्शवाएं, और जब आप अपने बारे में दुआ करें तो थोड़ी सी दुआ हम सब के लिए भी कीजिए, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए. और जैसा कि मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि इस दफ़ा का जो रमज़ान से पहले भी रमज़ान स्पेशल ही होगा, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं बहुत देर से आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन मुझे समहाउ कभी समझ नहीं आया कि मैं उसको कहाँ फिट करूँ. तो इस वजह से मैंने सोचा कि रमज़ान के जो है वो इस दफ़ा हम लोग तीन शोज़ करेंगे. दो शोज़ जो रमज़ान के अंदर होंगे, और उसमें से एक शो जो है वो हम लोग रमज़ान के बिल्कुल स्टार्ट में, अल्लाह की तरफ से हम लोगों को ये मौका मिल रहा है तो हम लोग वो एक रमज़ान का जो स्टार्ट वाला शो है वो भी रखेंगे. सो ये हो गया कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि हम लोग क्या करने वाले हैं. इसके साथ में एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग बहुत ख्याल रखें, वो ये है कि ये जो सेगमेंट है वो किसी के लिए भी तबलीग वाली चीज़ नहीं है. मुझे नहीं लगता कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी को तबलीग कर सकती हूँ या मैं किसी को कह सकती हूँ कि ये करो वो करो. मुझे नहीं लगता, मैं हर इंसान मतलब मैं गुनाहगार इंसान हूँ, और मैं किसी को ये नहीं कह रही कि तुम ये करो और ये करो वो करो. मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं जस्ट एक आम आदमी हूँ जो क्यूरियस है, बिकॉज हम सारे ह्यूमन बीइंग एज नेचर हम लोगों की ये होती है कि हम सब क्यूरियस होते हैं. हम लोग जानना चाहते हैं, हम लोग नई नई चीज़ें लर्न करना चाहते हैं, हम नए अलूम जो हैं वो डिस्कवर करना चाहते हैं. तो इस वजह से मेरी भी उसी चाहत में थोड़ा बहुत जो मैं करती रहती हूँ उसमें कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी. अब आप लोग भी जनरल नॉलेज के लिए सुन सकते हैं, लाजमी नहीं कि मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है ये वाला सेंडिंग सुनने के लिए, लेकिन एक मुझे लगता है कि एक इंसान होने के नाते एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार पता तो चले कि क्या हो रहा है. उन बीज आलिवस इन दस वी आल नॉयग्रिक जिन मैंशन जिन नॉयग्रिक उन वी मैशन ये दिन थाग वस नॉयस लैनन उन वैन वी वस निश लैनन खनन फजूखन विया इन वस नॉयस सुम एन डेक्कन ओद आइन फाख दी डेक के होक सुहेबन उन शाउन वस आफ द आंदन साइट ए गिप्ट उन होते इन उन जरा रमदान स्पेशल रेदन विया उबे दी साखन दी ओद दी इवेंट्स सो zu sagen, die im Ramadan passiert sind. Und wie Sie alle wissen und die, die nicht wissen, Ramadan ist ein Monat, wo alle Muslime fasten. Ja, bis zum Sonnenuntergang fasten wir und wir dürfen kein Wasser, nichts essen, nichts trinken und ja, so ist das. Es ist nicht einfach, aber ich glaube, wenn Sie mir fragen, ich trainiere seit ich 10 war und meine Kinder auch. Mein Kind, der Jüngste, ist circa 8 und er hat letztes Jahr angefangen zum Fasten. So seit man 7 ist, trainiert man oder übt man, und bis man so wie ich 36 wird, ist man so ein Profi. Ich bis jetzt habe im Winter gefastet, im Sommer habe ich gefastet, in Salzburg war es nicht einfach. Als ich hier neu war in 2013, Ramadan haben wir in August gehabt und das Sonnen Untergang war, oh Gott, es war um 9 oder um 9:30 die Uhr, und
Es war Katastrophe, so man darf nicht bis 9:30 oder bis 9 essen, aber und es war heiß auch und in Pakistan, obwohl es sehr heiß ist, aber wir sind gewohnt, dass man Klimaanlage zu Hause hat, aber da haben wir wirklich nichts gehabt und dann nur mit so like with a fan only, das Leben war nicht so einfach und Ramadan war auch nicht so einfach, aber ja, so ich werde schauen, dass ich in verschiedenen Sprachen wie immer switche und damit alle, die mir gerade hören, mich verstehen können. Aber on that note, so I think the topic is clear. We're going to talk about the basic things in Ramadan and the events that happened or occurred in Ramadan, month of Ramadan. And with that, I'm going to play all the kalams and not the songs. But I hope you enjoy the kalams because the kalams are not like, you know, random. These are like chuninda kuch kalams hain jo I think ki aapko pasand aayenge aur suniye aur enjoy kijiye. Ye Meher Zain ka hai ya Nabi Salam Alaikum. Okay, here we go.

सो आप लोग आ गए हैं वापस और हम लोगों का चल रहा है रमज़ान स्पेशल, और उसमें हम लोग डिफरेंट तरह के कलाम जो हैं वो चला रहे हैं, और उसके साथ साथ हम लोग रमज़ान की जो बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादा 30 या फिर 29 डेज़ जो है वो एग्जैक्टली रमज़ान के रोज़े होते हैं, और औरतें रोज़े नहीं रखती हैं जब उनको पीरियड्स होते हैं, तो मतलब औरतें आर एग्जेम्प्टेड उतनी देर के लिए। बट उसके बाद जो है जब अगले मंथ्स में बंदे को वो पूरा का पूरा जो है वो कंपनसेट करने होते हैं रोज़े, और ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों की जो हम फॉलो करते हैं, लाइक खाना नहीं खा सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, लेकिन जैसे ही अफ्तार का टाइम होता है खाने पर हम टूट पढ़ते हैं। मैंने अभी इतनी ज़्यादा वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर सारी दुनिया बैठ के समोसे बना रही है और पट्टियाँ बना रही है, और मुझे नहीं समझ आती, सीरियसली मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, बिकॉज अभी तक आई हैव नॉट डन एनीथिंग, मतलब सीरियसली यू कैन से कि मैं बहुत फॉर्ड हूँ, बट मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसलिए कुछ नहीं किया बिकॉज मतलब मैं खजूर से रोज़ा खोलूँगी और नमाज वगैरह एंड ऑल दैट, और उसके बाद मेरे जब हस्बैंड आएंगे तो हम लोग खाना खाएंगे प्रॉपर तरीके से, मतलब बट मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा हम लोग कुछ, या मतलब मैंने ऑब्वियसली घर में दावतें की हुई हैं और अफ्तारियाँ होंगी, तो मैंने वो सारा जो स्पेशल चीज़ें हैं वो मैंने अपनी अफ्तारियों के लिए बचा कर रखा हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि बैठकर बस अब शुरू ही हो गए हैं और बस अब समोसों पे समोसे और पकोड़ों पे पकोड़े, पट्टी पे पट्टी चल रही है। मतलब मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस देख रही थी और मुझे हो रहा था कि यार मतलब ये क्या हो रहा है भाई, तो मतलब ठीक है अगर आपको लगता है तो होना चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। मुझे लगता है कि ठीक है रमज़ान आ रहा है, लेकिन क्या पट्टी पे पट्टी और मतलब या I am not going to talk that much about it because फिर एक वो बात हो जाती है कि मतलब खुद तो करना नहीं और दूसरों को तनकीद करें, बट जो कर रहे हैं उनको थम्स अप, और जो नहीं कर रहे हैं और सिर्फ खाने पे फोकस करेंगे उनको भी थम्स अप, तो जिसको जो सही लगता है वो कीजिए। इसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रमज़ान के इवेंट्स की, और रमज़ान में क्या क्या होता है या क्या क्या इवेंट्स जो हैं वो हो चुके हुए हैं रमज़ान में, और उन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे। अब अगर आप लोग देखें तो रमज़ान को जो है वो हज़रत वसल्लम के टाइम्स पे एक नॉर्मल मंथ के तौर पर लिया जाता है, मतलब वो जो एक होता है ना दुनिया के सारे काम भी चलते रहेंगे, ये नहीं है कि जंगें बंद हो गई, ये नहीं है कि जी मर नहीं रहे हैं, सब कुछ साथ साथ चल रहा है, लेकिन इस्लाम मतलब लेकिन उसके साथ साथ जो एक अहमियत है रमज़ान की वो भी साथ साथ चल रही है, तो मतलब ऐसी चीज़ें आपको मतलब ये है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और सारा कुछ है, लेकिन उसके साथ में ये नहीं है कि आपका रोज़मर्रा वाली दुनिया से आपने एक किनारा कर लिया और बिल्कुल साइड पर होकर बैठ गए, वो वाली चीज़ भी नहीं है, जो कि आई फाइंड इस्लाम ने बड़ी वो मज़े की कि आप ऑल्दो आप वो सारा कुछ कर रहे हो जो कि करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ वो मैं बचपन से मेरी अम्मा से सुन रही हूँ दीन और दुनिया दोनों रख रहे हैं, तो हम दीन और दुनिया दोनों लेकर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि साथ साथ हों। जब ये बात मैं अभी इस टाइम पर क्यों कह रही हूँ, द थिंग इज़ दैट इस्लाम में जब आप रमज़ान के बारे में थोड़ा सा पढ़ें कि रमज़ान में कौन से इवेंट्स जो हैं वो हुए हैं, तो उसमें देर आर सो मैनी बैटल्स जो रमज़ान में हुए हैं, लाइक बदर जो है वो दो आफ्टर हिजरा, जब हिजरत के बाद जब मक्का से मदीना चले गए थे सब, तो मतलब जब दो साल हो गए थे वहाँ पर गए हुए थे, तो बैटल ऑफ बदर हुआ था, और बदर में वो बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो ऑब्वियसली उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था, और वो एक कुरैश ऑफ मक्का और जो मतलब मुस्लिम्स जो हैं उनके और कुरैश ऑफ मक्का जो हैं उनके अगेंस्ट जो है वो लड़ाई और भड्डा जो भी था वो हुआ था, और बदर के मुकाम पर हुआ था। बदर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट मुकाम, बिकॉज एंड ऑफ टाइम्स में दज्जाल से रिलेटेड भी बदर बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन 17th रमज़ान को जो है वो ये एक वॉर और एक और बैटल जो है वो शुरू हुआ था। इसी तरह कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का जो है वो भी रमज़ान में ही हुआ था, इट हैपन ऑन 18th को, लेकिन ये आफ्टर 8
तब आफ्टर 8 years ऑफ हिजरा के बाद ही हुआ था. तो मतलब पहला बैटल जो हुआ था वो 2 साल के बाद हुआ था, और फिर जो मक्का वापस कॉन्कर करने का, या कॉन्कर का वर्ड यूज़ करें, या आप कहें कि मक्का जो वापस गए थे सब, और वो हज़रत सल्लम ने बुत तोड़े थे और वो सारा कुछ, और वो यहूदी नहीं, यहूदी नसारा वाला मदीना में है, लेकिन जब वापस गए थे तो उन्होंने कहा था कि उनको किसी से कोई शिकवा नहीं है और किसी से उन्होंने बदला नहीं लेना है, और एक आम माफ़ी का ऐलान हो गया था. तो वो वाली जो चीज़ है वो इट हैपेंड इन रमज़ान ऑल्सो. ठीक है, इसके अलावा देयर वाज अ बैटल जिसमें हज़रत तारिक बिन ज़ियाद जो हैं उन्होंने एक लड़ा था, एंड दैट वाज आल्सो अगेन इन रमादान. एंड देन बैटल ऑफ एन जलूत जो है, दैट वाज आल्सो इन इन दिस मंथ. तो मतलब देयर आर सो मेनी थिंग दैट हैपेंड इन द मंथ ऑफ रमादान, और वो मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ कि वो साथ साथ उनके वो चलता रहा है कि यार एक तरफ आपकी इबादत चल रही है और सबसे मुकद्दस 10 महीने, और दूसरी तरफ आपने वो जो दुनियादारी है और उसमें आपकी नीड्स हैं और उसमें आपके एक वो एक आपके ऊपर काम है आपका कि आपने अपने लोगों को हिफाजत रखनी है और अपने लोगों को सेव करके रखना है. वो चीज़ भी एक प्रॉपर तरीके से रमज़ान के साथ साथ चलती रहती थी. इसीलिए जब आप आम रूटीन में जाते हैं घर से बाहर, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जो काम करने हैं वो भी कीजिए, और उसके साथ साथ में आप अल्लाह का इबादत भी कीजिए, और जहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिले वहाँ पर थोड़ा सा बैठ कर तस्बीह बंदा कर लेता है. और नमाजें जो हैं वो तो मैं तो गाड़ी में भी पढ़ लेती होती हूँ. तो मतलब द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक रूटीन जो एक तसलसल है ना वो बरकरार रहे. और जी हाँ, यही कहना चाह रही थी मैं. तो जब आप वापस आएंगे तो उसके बाद रमज़ान में होने वाले एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट के बारे में हम बात करेंगे. और अभी यू आर गोइंग टू लिसन टू हस्बी रबी बाय समी यूसुफ. Enjoy कीजिए, it's live and it's very good.

0: जिसकी बिगड़ी आए नबी तुम अंदर जाओ।
1: सो अभी इसी चीज़ के साथ हम लोग जो है अपना शो वाइंड अप करेंगे, और आई होप कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह मियाँ से अपनी दुआएं मनवाएं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, साल्सबर्ग।

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान